सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसेय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटीय तुद जिठे सच्चे पातशाहो मल जन्म जन्म दी कटीय सज्जन सच्चा पातशाहो सिर साहंद साहो जिस पास बहिठिया सोहिए सब नांदा विसाहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

मैं सुख कनेर कोई न जाने तुमरा अंत ऊँचे ते ऊँचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए कर नौ निदया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसम पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी पंजा

0: जाए।
1: नामृत माए समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना,
1: नानक जन का दासन दसना।
0: प्रभु को सिमरै से तनवंते,
1: प्रभु को सिमरै से पतवंते।
0: प्रभु को सिमरै से जन परवान,
1: प्रभु को सिमरै से पुर प्रधान।
0: प्रभु को सिमरै से बे मोहताजे,
1: प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे।
0: प्रभु को सिमरै से सुखवासी,
1: प्रभु को सिमरै सदा अवनासी।
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला,
1: नानक जन की मंगेर वाला।
0: प्रभु को सिमरै से परोपकारी,
1: प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी।
0: प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै,
1: प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै।
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता।
0: प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे,
1: प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे।
0: संत कृपा ते अंदिन जाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे।
1: प्रभु कै सिमरन कबूल चूरे।
0: प्रभु कै सिमरन हर गुणवानी,
1: प्रभु कै सिमरन सह समानी।
0: प्रभु कै सिमरन निःचल आसन,
1: प्रभु कै सिमरन कमल विगासन।
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार,
1: प्रभु सिमरन का अंत न पार।
0: सिमरै सेजन जिनको प्रमया,
1: नानक तिन जन सरनी पया।
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते। हर सिमरन धारी सब धरना,
1: सिमर सिंह

जय मात पिता सुत मीत न भाई, जय महा भयान दूत जम दलै, जय मुश्किल होवे अत भारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, सगल सिष्ट को राजा दुखिया, लाख रोरी बंदना परे, अनक माया रंग दिखना बुझावे, जे मार्ग जात केला, ऐसा नाम मन सदा ध्याय, छूटत नहीं कोट लखवाही, अनक बिघन जय आहे सिंगारे।

0: मैं श्रेष्ठ धर्म,
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म,
0: सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सगल उद्यम मैं उद्यम भला,
1: हर का नाम जपो जी सदा,
0: सगल बानी मैं अमृत बानी।

0: कहो कहा करे
1: जिस ठाकर स्यो नाही चारा
0: ताको की जय सर नमस्कारा
1: जा के मन लागा प्रमिटा
0: सर्व सूरता हूँ मन उठा
1: जिस जन अपना हुक्म नाया
0: सर्व थोक नानक तिल पाया
1: अगंत शाप नी दे रास
0: खात पीत भर तय नंदुलास
1: अपनी अमान कश बहर शाले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवे
0: बहर उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी वास्त दिस आगे रखे
0: प्रभ की आज्ञा माने माथे
1: उसते चौगण करे निहाल
0: नानक साहिब सदा।

0: कुंजन चरण पराता
1: करो बेनती पार रब सब जाने
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप आप करतन वेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप स्याण सगल ते रहत
0: सब कछु जाने आत्म की रहत
1: जिस पावे दिस

0: जय प्रसाद छति अमृत खाहे
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिस को सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बसै सुख मंदर
1: तिसे तिहाय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा तिहाये ध्यान जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटम बरहंडावे
1: तिसे त्याग कत हर लुभावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मने आठ पहर ताका जस गावी जय
0: जय प्रसाद तुझ सब को माने
1: मुखता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जपत दर्ग है मान पावे
1: नानक पासे ती कर जावे
0: जय प्रसाद अरो कंचन देही
1: लिवलावो तिस राम सुनेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत
1: मन सो पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सर।

0: सा सुने कर नाद,
1: जय प्रसाद पीके बिस्माद,
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना,
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
0: जय प्रसाद परम गत पावे,
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागू,
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार,
1: तीस प्रभ को मूल मनो विसार।

0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग बटे सो ज्ञान,
0: साध के संग बूझे प्रभ नेरा, साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संगे ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा ब्रह्माय समानी,
0: साध के संग गोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर फुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कतहु तावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध के संग माया ते भिन्न,
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सा मीत,
1: साधु के संग महापुनीत,
0: साध संग किस्यो नहीं बैर,
1: साध के संग ना बीगा पैर,
0: साध के संग नाही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंद।

ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने।

0: वेद पुराण सिमृत बुझे मूल
1: सुखम में जाने अस्तूल
0: चौवर्ण कौ दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सदा देश
0: नीर मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौवर्ण में जपे को नाम
0: जो जो जपे तस की गत होए
1: साध संग पावे।

0: तब तुम्हारे ठांड वर्ताई
1: अनंत बया दुख नाठे पाई
0: जन्म मरण के मिटे देसी
1: साधु के पूरन उपदेसी
0: पाव चुका नर पाव है बसी
1: सगल आत्मा देखे नसे
0: जिसका साथन कृपा धारी
1: सा संग जप नाम मुरारी
0: कित पाई चुके ब्रह्म गबन
1: सुन नाम के हरिया जा सरवन
0: निर्गुण आप सरगुण पियो ही अपने चरित प्रभ आप बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: हर बिंदु जा नाही कोई
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: ओत पोत रवैया रूप रंग
1: साध के संग
0: रच रचनाय।

0: जब आकार रेखा चंद्रष्टिता जब धारी अपन सुन समात
1: बैर विरोध की संग कमात
0: जब इसका वरण चिन्ह जापत
1: हर शोको किसे व्यापत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: परम
0: आपन खेल आवर्ती जा
1: करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: को किसको गनी
0: जब एक हर अगम अपार
1: को कोने अवतार
0: जब निर्गुण प्रभ से सुभाए
1: सगत को हो के दिठाए
0: जब आपे आप अपनी जो तरे
1: कवन निडर कवन कत डरे
0: आपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकुर गमे अपार
0: अविनाशी सुख अपनासन
1: जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: जब त्रास को हो किस होए
0: जब विगत गोचर प्रभ एका
1: जब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: कौन झूठे कौन बंधन बाते
0: आपन आप ही चर्जा
1: आपन रूप आप ही प्रजा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पद होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: चल छिद्र लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे कर्ण करावन करने हार
1: नाने करते का नाए समार
0: जब अपनी शोभा आपन संग मनाई जय सर्व कला आपे परवीन जब अपन आप उतारे जय आपन ऊज आपन आप नेरा
1: ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विस्म रहे विस्माद
1: नानक अपने का जानो आप
0: जय अचल अछेद अभेद सुमाया
1: भाग से व्याप्त माया
0: आपस को आपि आदिश जय एक एक एक भगवंता जय अपन आप दियारा
1: कौन कथे कौन सुनने हारा।

उद्यम जा हर हर जियो परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आज्ञा कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत।

रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहि ठाकुर, काहि मन पौ करिया। ऊड़े ऊड़ आवे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया। तिन कवन खुलावे, कवन चुगावे। मन में

जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावै है हर त्यावै तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंत।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कव्यो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो काट काट के अन्...

तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै। आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालमा। जानत भेद भेद अर आलमा, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई, अडिल सुने गुंग जो याहे, सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर की रहै, हो जो याकी एक बार, चौपई को कहै, चौपई संबत सत्रह है सहस पण जय, अर्ध सहस पुन तीन की जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर स्तद्रव

भए सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित रख उरतारो तम संसार चरण लग तरिया

हे अतसूर संग्रामं अत बल ना बहुमर्द नह गण गंधर्व देव मानुख्यं पशु पंखी विमोह नह हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वर है सो कहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साह जिस पास बैठिया सोही है सब नांदा विसाह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहस तव नैन नैन है तोहे कौ सहस मूर्त नना एक तोहे सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब में ज्योत ज्योत है सोए जिसदे चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सपावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिन मोहे आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़े पूर्व महला चौथा काम क्रोध नगर बा परया मन साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पन वड्डा हे कर डंडौत पन वड्डा हे रहा साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बा सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मुशकीन प्रभ तेरे।

गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सिखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंध सोदरा गुरुदेव दादा हर

सुखमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम न सह, प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन डरे, प्रभ सिमरत कुछ बिघ न लागे, प्रभ के सिमरन अंधन जागे, प्रभ के सिमरन भौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे, प्रभ का सिमरन साध के संग सर नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बोध, प्रभ के सिमरन जपता पूजा, प्रभ के सिमरन बिनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन तर के मानी, प्रभ के सिमरन होय सुफला, प्रभ के सिमरन सुफल फला, से सिमरै जनाब सिमराय नानक ताके लागो पाए, प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ के सिमरन उतरे मुचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ के सिमरन सब कुछ सुजै, प्रभ के सिमरन नाहीं चमत्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्णासा, प्रभ के सिमरन मन की मन जाए, अमृत नाम अमृत माहे समाए, प्रभ जी पसे साध की रसना, नानक जिनका दास दसना, प्रभ को सिमरै से धनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते, प्रभ को सिमरै से जन प्रवान, प्रभ को सिमरै से पुर प्रदान, प्रभु को सिमरन से भेमोताजे, प्रभु को सिमरन सर्व के राजे, प्रभु को सिमरन से सुखवासी, प्रभु को सिमरन सदा विनासी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जनकी मगर वाला, प्रभु को सिमरन से परोपकारी, प्रभु को सिमरन तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरन तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरन तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरन तिन निर्मरीता, प्रभु को सिमरन तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरन बसिया नेरे, संत कृपा ते आंदन जाग, नानक सिमरन पूरे पाग, प्रभु के सिमरन काज पूरे, प्रभु के सिमरन कभु न चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बाणी, प्रभु के सिमरन सहज समाणी, प्रभु के सिमरन चलासन, प्रभु के सिमरन कमल विकास, प्रभु के सिमरन अनहद चुनकास, प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरै से जिन जिन को ब्रह्मया, नानक तिन जन सनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद पाए, हर सिमरन पैसे जति दाते, हर सिमरन नीचो गुण जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण कारना, हर सिमरन क्यों सगल कार,

जय मात पिता सुतमीत न पाई मानु हुआ नाम तेरा संग सहाई जय महाप्यान दूत जम दलै के तह केवल नाम संग तेरा चलै।

संतोषही लयस जय मानके गणेश जय न को सार का नाम हुआ संतोष जय पेंडे महान दुगबारा हर का नाम सांगो जियारा जहाँ पान तेरा को नास जानू हर का नाम ते नाल पछानू जय महाप्यां तब काम ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझा कर खे ते नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखे साध कुमात।

प्रांग हर नाम जब का परे न पांग हर का नाम जन हर का नाम जन की वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जब कछ नाही ब्योग जन राता हर नाम की सेवा नान पूजे हर हर देवा हर हर जन के मालिक जीना हर तन जन को आप रब दीना हर हर जन के ओठ स्थानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत बोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै।

एक बार नौखंड पृथ्वी फिरे च जीव महोदास तभी सथी वह अगन माय हो मत प्राण कन कैसे वह भरपूर दान न्योली गर्म करे भवासन जैन मार्ग संजम मत साधन निमक निमक कर शरीर घटावे तो भी हमें मैल न जावे हर के नाम संसर्ग नाहे नान

जल तो वे पदे अनित सुत गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पत बहुमूच बौद्ध सियाण जम का पव्या पै अनिक जतन का तृष्णा त्रा पै पे खने गगनि बुझै कोट पाव दर्गनि सिजै झूठ सुनाई उपयाल मोहे व्यापे माया जाल वर्ग टूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नान बोले सहज पाए चार पदार्थ जे को मांगे सब जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमे शोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख सगल पुरख में पुरख

सुख दुख जन समझता नान पाप निलेपा निर्धन को धन तेरु नाओ ने थावे को नाव तेरा थाओ ने माणी को प्रभ तेरो मान सगल खटा को देवो दान कर्ण ग्रावण हार स्वामी सगल खटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संग प्रभ राते तुमरी ओसत तुम ते होए नान कव न जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल वाणी में अमृत बाणी हर को जस सुन रसन खानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जे कट वस

दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कर खोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा गौ कहा करे, जिस ठाकर सुना ही चारा, ताको कीजे सत नमस्कारा, जाके जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुखताओ मन बूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व तो नान तिन पाया, गंध सो अपनी दे रास, खात पीत बरते नंद उलास, अपनी मान कछ बौर सोले, अज्ञानी मन दोष करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे, जिसकी बस्ती सागर राखे।

जा नाही रसना पारस मन में प्रीत निरंजन दर्स पात्र रूप न पेख नेत्र सादगी बैल सब संगीत कर न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आप उसको मंदा गुर प्रसाद भिक्षा पर हर है मन की बास न मानते डर है इंद्री जीत पंच दुख ते रहत नान कोट में देखो ऐसा पारस वैष्णो सो जस ऊपर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते हुए पिन कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं पाच है केवल भगत कीर्तन संग्राच है माता नंद सिमन गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप दृढ़ अवर नाम पावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्टा संग मन जय मिसे सगला परम कर पूजय सगल पार ब्रह्म सार संग पापा मल होवे तुम भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तनर पे विष्णु प्रीत हर के जन हृदय वसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर भूत है राम नाम आत्म में सूत है राम नाम सारा स्त्रीव है उस पंडित कह उपदेश जग जीव है हर की कथा हृदय वसावे सो पंडित में जो नावे वेद प्राण समझ पूजे मूल सुख में जाने स्थूल चौबना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौबरना में जपै को नाम जो जो जपै तिस्ती का तोये सासंग पावे जन कोय कर के पांतर उतारे पस प्रीत मुक्त पात्र को उतारे सर्व का उगत नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहु जुगत कि न पाइय धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास संतर पैदन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर के परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची पर है सगल संग आत्मो दास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्म मितावे जीवन मुक्त सुख कहावे तैसा हर्क तैसा उत्सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी विखाटी

प्रथम थमन त्योगुर का शब्द मने असमन जो पाखाण नाम चढ़त रह प्राणी गुर चरण लग्न स्तर ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुरदर्शन एक मन होए विकास ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे त्यो साधु सांग में ज्योत प्रगटावे तिन संत की बाचो तूर नानकी हर लोचा पूर मान मूर काय बिलाये पूर्व लिखिका लिखिया पाये दुख सुख प्रव देवनार वर त्याग तू तिथे चितार जो कुछ करे सोई सुखमान पूला गाय फिर जान कौन बसता है तेरा संग लपट रो रस रोपी रोपी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पसेती कर जाए।

सस पर संहार, पूजा सस सेवदार, दर्शन सस पेखनहार, नाम सत सत त्यावनहार, आप सत सत सवतारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रवक्ता, सुरत सत सच सुनता, पूजन हार को सस भोए, नानक सत सत प्रसोए, सत स्वरूप हृदय जिन मान्या, करण करावन तिन मूर पछान्या, जाके हृदय विश्वास प्रपाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भो हुए बसाना, जिसते उपजे तिस माहे समाना, बस्त माहिले बस्त गढ़ाई, ताको बिन न कहना जाई, बूझे भूजन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु तारे, नानक सो सेवक सास सास मारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गतमित कोई न रखे, ताकि गतमित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दहद्रिस प्रगटाया, निकी कीरी महकल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटत आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन कर पात, तिस्ते तिसके कर्तव्य पिथे जात, मारे न राखे अवर न कोई, सरब जिया का राखा सोई, काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ अलग बुढ़ानी, बारम बार बार प्रभ जपिए, पी अमृते हे मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसकिच अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जन तृप्ताने, मंतन नाम है नाम समाने, उठत बैठत सुबत नाम, कहो नानक जन के सत्काम, बोलो जस जेबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नी दात, करे भगत आत्म के चाय, प्रभ अपने स्यो रहे समाए, जो हुआ हो वह सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म बुझाने, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु बछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी सरल सर्व सुख पावे, तिसके दरस सब पाप मिटावे, अवर से अनर सगली छा, तिस जन की तू सेवा लाग।

सेकी गुर दुर्मत मल हिरा गुर बचनी हर नाम उचरा सतगुर सिख के बंधन काट है गुर का सिख विकारते हट है सतगुर सिखो नाम धन दे गुर का सिख बनभागीए सतगुर सिख हल्त पद सवारे नानक सतगुर सिखो जी नाल समारे गुर कै ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह

जगदन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मरी सरदापुर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यागो चरण कमस्यो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे ना प्रभ सार प्रभ की दृष्ट

सो क्यों बिसरे जे काल न पाने, सो क्यों बिसरे जे किया जाने, सो क्यों बिसरे जे सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखे, गुर प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरे जे विकते काटे, जन्म जन्म का टूटा गाटे, गुर पूरे तत एह बुझाया, प्रभ अपना नानक जनते आया, साजन संत करो हे काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो अवरह नाम जपाओ, भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी छार, सर्व कल्याण सुख निदनाम, बूढ़क जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मंथन अंतर एह सुहाओ, नेत्रों पेक दरस सुख होए, मन विकसे सा चरण तोय, भगत जना के मंथन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजे करमया, गुर प्रसाद नाम जप ले, ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए, प्रभक्सन दीन दयाल, भगत वचन सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्वपटा करत प्रतपाल, आंत पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपे से हुए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुणियार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनेक राज को घोड़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर मीत, पली सुकनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूरन गुरुमंत्र।

जब एक हर अघम पार तब नरक सुर को कौन उतार, जब निर्गुण प्रभु सहस पाए तब तब सिर सकत कहो कित ठाए, जब आपे आप अपनी ज्योत रह तब कवन निडर कवन कत डरे, आपन चलता करने हार नानक ठाकुर अघम पार, अविनाशी सुख अपन आसन तय जन मन को का अविनाशन, जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास को किस होए, जब अभी

निरंजन का निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिदर लगत को किस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे पूर्व कवन तृप्तावे कर्ण क्रावण का निहार नानक करते का नाय स्मार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित सुत पाई जय सर्व कला पै परवीन तय वेद देव कहा को चीन जब आपन आप उनकार है तो सगन आप सगन कहा विचार है जय आपन पूछ आपन आप नेरा तय कौन डागर कौन गई है चेरा बिस्मन बिस्म रह बिस्माद नानक

सकल सामग्री एकस घटमा है, अनेक रंग नाना दृष्टा है। नौनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहतह नाद, कह न जाई अचल विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए, नानक तिसन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कटकट व्याप रहा भगवंत। तरन में है आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। ओण पाणी पे संतर माहे, चार कुंड दह दिसे समाये, तिस्ते पे नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत में देख, ससियर सूर नखत में एक, वाणी प्रभ की सबको बोला है, आप अडोल न कभू डोला है। सर्व कला कर खेल है खेल, मोल न पाइए गुण अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, आर्यो स्वामी उद्बोध। गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन में एह विश्वास। संजना का बेखन सब ब्रह्म, संजना के हृदय सब धर्म, संजना सुने सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी ए रह, सत वचन साधु सब कह। जो जो हुए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर भी होगी, नानक दर्शन देख सन्मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रत्ये सगली उत्पत, तिस पावेता करे विस्तार, तिस पावेता एक अंकार। अनिक कला लखी नह जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप परपुर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिजन आप बुझाए। सर्व भूत आप वर्तारा, सर्व नयन आप खनहारा, सगल सामग्री जाका दना। आपन जस आप ही सुना, आवन जानिक खेल बनाया, आज्ञा प्यारी कीनी माया। सबके मत अल्पतो रहे, जो किश करना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए। इसते हुए सुना ही बुरा, उरे गहूँ कने कच करा। आप पला कतु तकनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साजदारी सब साज, ओत पोत आपन संग्राज। ताकि गतमित कहीं न जाए, दूसर हुए तो सोची पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक कह जान। जो जाने तिस सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जग तराया। जन आवन का ए सुहाओ, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुगत मुगत कर।

मानांतर की उत्तर है सिंध आसन त्यागो तरंग साधना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो सास संग अग्न सागर करो हर तन की पर ले भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुश सहजानंद सा संपत परमानंद नानक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो जित जित वो नारायण एक मुझा के रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुर्भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुन कुमावत हो तो उदार आप तरह लोके नस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लागा हर रंग जय जय सगनाथ वास जय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उतरे जिनके साथे सन जोग सुसनी आए कर के प्रभाव मिलाए मिट गए बैर पै सबरे नमर नाम सा संग लैन सुपर सन पै गुरुदेव पूर्ण हो सेव के सेवाल जाल बिगाड़ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रभतारी नानक नि बह के पहमारी प्राप्ति उसत करो संत मीत सावधान का कर चीत सुखमुनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो दिन दान सर्विचता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब दे उच्च पय स्थान भव न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नान से प्राप्त होए खेम शांत रित नाम ने मोदियान सर्व सिद्ध विद्या तप जो प्रभ ध्यान ज्ञान से सुख विश्राम चार प्रधान कमल प्रगा सबके मत सकल देवदास सुंदर चतुर तत्का बेथा समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन

0: गुरुदेव श्याम सद्बुद्ध मुहूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव
1: अमर सरोवर गुरु ज्ञान वचन परंपरा
0: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आ जुगा जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभु।

अति जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुकम सब सृष्ट सवार्य ब्रह्मांड खांड पूरन ब्रह्म गुण निर्गुण।

कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अर सौ कुर सौ चटी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सब ना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: नमो सर्वमाने समस्ति निधाने
1: नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे
1: नमो पान पाने नमो मान माने
0: नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने
1: नमो गीत गीते नमो तान ताने
0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे
1: परभंगी परमाते समस्ते विभूते
0: कलंकन विनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे
1: नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र प्राणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अभुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वर परम जुगते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
1: नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
1: नमो साहसांग नमो पुप पुपे
0: नमो दान दाने नमो मान माने
1: नमो रोग रोगे नमो संग सुनामे
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईश्वरे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनूपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता
1: अघ ऊर्ध कांग का गोग हरता
0: परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पाल।

0: अनंगन स्वरूपे पंगलबुद्धे
1: परमात्म परमाते सदा सर्वसाते
0: अगार स्वरूपे निर्वादबुद्धे
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
0: न पापे न माते न जाते न पाते
1: साक सरीके अमितो अमीके
0: सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांत प्रसाद
2: के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है
1: हमें सुसलाम है स

0: मनो क्यों विसारिया ए वरदाता जे अगर मैं हार पहुंचावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमत सदा संभाली है
0: जैसी अगर उधर मैं तैसी बाहर माया
1: माया
0: जित हर विसर।

0: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनों सिर सौंपी है बिच्छू आप जाए।
1: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मनाए।
0: हर आप मुल्क है भाग तिना के नानका जिन हर पले पाए।
1: हर रास मेरी मन वनजारा हर रास मेरी मन वनजारा सतगुर ते रास जानी।
0: हर हर नित जप्यो जियो लहा कट्यो दिहाड़ी।
1: एहो धन दिन मिलिया जिन हर आपे पाना।
0: कह नानक हर रास मेरी मन हो आपन जारा।
1: ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए।
0: प्यास न जाए होत कहते जिच हर रस पले न पाए।
1: हर रस पाए पले पिए हर रस बहु न तिस न लागे आए।
0: एहो हर रस कमी पाइए सतगुरु मिले जिस आए।
1: कहे नानक और अनरस सब विसरे जा हर वसे मन आए।
0: ए शरीरा मेरा हर तुम्हें जोत रखी ता तू जग में आया।
1: हर जोत रखी तुझ विच ता तू जग में आया।
0: आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत खाया।
1: गुर प्रसादी बूझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
0: कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया।
1: मन चाओ पया प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया।
0: हर गाओ मंगल ने सखिए सोग दुख ना व्यापे।
1: तू चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जापे।
0: अनहत वाणी को शब्द जानी हर नाम हर रस
1: कहे नानक प्रभाव मिलिया करन कारण जोगो।
0: ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुझ कर्म कमाया।
1: के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग में आया।
0: जिन हर तेरा रचा रचिया सो हर मन ना बसाया।
1: प्रसादी हर मन बसिया पूरब लिखिया पाया।
0: कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर सो चित लाया।

0: कार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें तब प्रसाद स्वये दीनन की प्रतिपाल करें नित संतो बार गनी मन गार है
1: पश प्रचोला नाग नाथ सर्व समय सब को प्रतिपाल
0: भगत है जल में थल में पल में कल के नि कर्म विचार है
1: दीन दयाल दया ने दुखन देखत है पर देत न हर
0: दात है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल दार है
1: खंड खंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत समार है
0: पार न पाए सके पद्मापत वेदक तेव भेद उचार है
1: आदत
0: भविख भवान लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सुख न भोग न पह
1: है।

0: ताकत है अपनो कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे
1: और की बात कहां कह तो सो पेटे ही के पट बीच बचावे
0: जाच पुजंग सो दानव देव अपेव तुम्हें सभी कर त्यावे
1: उमकास पताल रसातल जाच पुजंग सबे सिर न्यावे
0: पाए सके नी पार प्रभाहों को नेति नेते वेद बतावे
1: होय तके सभी कुजिया सुरहार परे हर हाथ ना
0: नारद से चुतरारन से रुमनारक से सब मिल गायो
1: भेद कतेव न भेद लख्यो सरहार परे हर हाथ न आयो
0: पाए सके नी पार मापक सिद्ध सनात सनंतन त्यायो
1: ध्यान करो तह को मन में जय को मितो सबे जग छायो
0: भेद पुराण कतेव गुरान भेद निर्पाण सबे पछारे
1: भेद न पाए सके और भेद को खेदत है अनछेद पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साख न सोग न सांग तिहारे
1: आद नाद गाद बेखद वेग जप्यो तिन्ही

0: संत सहाय सदा जगमाए कृपा कर श्याम है वरदी जय सैया
1: दे शिवा परमोए है शुभ कर्मन ते कबू न तरो
0: नारो वर्षो जब जाए लगन निश्चय करे अपनी जी।

0: चिंता लाए हमारी रहाओ।
1: अवर्ण सूजे दूजी टहर हार प्रयो त्यो द्वारी
0: लेखा छोड़ लेखे छूटे हम निर्गुण हो।

आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत। देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोलबाले बोलो जी।

प्रेम बख्शिश करने सतगुरु जी आप जी दे हजूर आप जी दे दर कर दे सेवक सरदार कुलदीप सिंह बीबी रणजीत कौर जी वल्लों अपनियां बच्चियां सवनीत कौर राजवीर कौर दे जन्मदिन दी

कछु ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई सो कहो तल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिद्ध सन दी नूर अरसों कुरसों चटिय तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिय सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावी साहो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी छंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिले सुभाए सहज गुण गाइए जियो हर जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिले सुभाए सहज

सेवक की संतोख जिन सचो सच त्याया उन्नी मन दे पैर न रखे उन कर सुकर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित।

यत्सूरसङ्ग्रामं अत्बलनां बहुमर्दनैः गणगन्धर्वदेवमानुख्यं पाशुपङ्खीविमोहनैः हरकर्णहारं नमस्कारं शरणनानक जगदीश्वरः हरकर्णहारं नमस्कारं शरणनानक जगदीश्वरः सो कहो टल गुर सेवीय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाय गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामदी नूरे अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सजन सच्चा पातशाह सिरसा हांदे साह

वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै प्रभ कै सिमरन भव न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होय सुपला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ताकै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किस सुझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से तनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै है से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगैर वाला प्रभ को सिमरै से पर उपकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसे हर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कभु न झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज सुमानी प्रभ कै सिमरन निश्चलयासन प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरै से जन जिनको प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भेद सहित सिद्ध जति जाते हर सिमरन नीचों कुंठ जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन में आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानकी प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मन ऊहा नाम तिरे संग सहाई जय महाभयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तिरे चलै जय मुस्कल हो वैत भारी हर को नाम किन माहे उदारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होय सुखिया लाख करोरी बंद न परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग उजाते केला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याइय नानक गुरमुख परम गत पाइय छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जपत पार पराही अनिक बिगंज आए संघारै हर का नाम तत्काल उदारै अनिक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै विश्राम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साध कै संग जे मार्ग के गन जाहि न कोसा हर का नाम हां संग तोसा जह पैडै महान गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को न सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा भयान तप्त बहुका